0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
1: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
2: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
3: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
4: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
5: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
6: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो घड़ी कब आकर ठहरेगी। तुम्हारा क्या काम कि उसका वक्त बताओ, उसका इल्म तो अल्लाह पर खत्म है। तुम सिर्फ खबरदार करने वाले हो हर उस शख्स को जो उसका खौफ करे। कब आकर ठहरेगी?
1: कुफार मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल बार बार करते थे, और इससे मकसूद क़यामत की आमद का वक्त और उसकी तारीख मालूम करना नहीं होता था, बल्कि उसका मजाक उड़ाना होता था।
0: जो उसका खौफ करे,
1: इसकी तशरीह भी हम तफसीर सूरह मुल्क में कर चुके हैं। रहा यह इरशाद कि तुम हर उस शख्स को खबरदार कर देने वाले हो जो उसका खौफ करे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि खौफ न करने वालों को खबरदार करना तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे खबरदार करने का फायदा उसी को पहुंचेगा जो उस दिन के आने का खौफ करे।

बीमा, बे का मतलब क्या होता है? साथ, और माँ का क्या मतलब है? जो, मिन माँ से जो, और बीमा ताज जो, उनजिला नाजिल किया गया। उर्दू में कभी पढ़ा आपने नाजिल होना? पुलान नाजिल हो गया, क्या मतलब होता है? आ गया, उनजिला। इसका आप रूट देखिए, नून जे लाम, नजला उतरना, बीमा उनजिला। आगे क्या है? इलाही का, इलाही का भी असल में था इला और का, इला और का। इला का मतलब होता है तक, तरफ, और का मुखातब के लिए, तुम्हारे, आपके। और इलाइका का क्या मतलब पढ़ा आपने? आपकी तरफ। बिमा उन्जिला इलाइका, वमा वा कहाँ पढ़ा आपने पहले? वलद दालीन। पीछे से जितना मिला के आप पढ़ेंगे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। वा, और माँ का क्या मतलब है? जो, वा माँ, और जो। अब आप देखिए माँ कितनी दफा आ चुका है, मिन माँ, बी माँ, वा माँ, ठीक है। जो, उन्जिला अगेन उतारा गया, मिन से पीछे पड़ा, मिन कहाँ? मिम्मा, ठीक है। कबले का, इसका रूट है काफ बे लाम, और का किसके लिए है? मुखातिब के लिए, इलाइका की तरह। कबले का, व मिन कबले, व बिल आखिरती। बे का क्या मतलब है? साथ, और आखिरत किससे है? आखिर से। आखिर किसको कहते हैं? आखिरी, लास्ट, क्यामत का दिन। बिल आखिरती हम, वो, यू किनून यकीन रखते हैं, और यू किनून का जो रूट है वो है या काफ नून, यू किनून। उलाइका, उलाइका का माना था यही लोग। अला, अला का क्या मतलब है? ऊपर, पीछे पढ़ा आपने कहाँ? अलैहिम, अला और हुम था। अला का मतलब होता है ऊपर। उलाइका अला हुदन, हुदन पढ़ा, हुदन लिल मुत्तकीन। मिन पढ़ा से, रब्बिहिम रब पढ़ा है आपने, हिम उनके, हिम और हुम एक ही चीज है। रब्बिहिम असल में क्या है? रब और हुम। व उलाइका, और यही लोग, हुम वो, अलमुफलहून किसकी जमा है? अलमुफलह की, अलमुफलह। मुफलह का लफ्ज है फलाह से है, मुफलह, फा लाम हा, फा लाम हा। फलाह कहते हैं कामयाबी, और मुफलह कहते हैं कामयाब होने वाले, ठीक है। तफसीर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। हरूफ तहजी अरबिक अल्फाबेट्स के लेटर्स हैं। अलिफ, जिससे अलिबाता शुरू होता है, और उन्हीं में से एक है लाम, और उन्हीं में से एक है मीम। अलिफ लाम मीम, इनको लिखा इकट्ठे जाता है, लेकिन पढ़ा अलग अलग जाता है। चूंकि अलग अलग पढ़ा जाता है, इसलिए इनको हरूफ मुकत्तआत भी कहा जाता है, मुकत्तआत। और मुकत्तआत का लफ्ज है ये कता करने से। कता करने का क्या माना होता है? काटना। काट के चीज को क्या किया जाता है? अलग अलग कर दिया जाता है। मसलन आप सब्जी काटते हैं ना, क्या माना होता है काटने का? जी, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। तो ये हरूफ लिखे इकट्ठे जाते हैं, और पढ़े अलग अलग जाते हैं, तोड़ तोड़ कर पढ़े जाते हैं, इसलिए इनको हरूफ मुकत्तआत कहते हैं। ये कुरान मजीद की कई एक सूरतों के शुरू में आते हैं। कहा जाता है कि अलिफ लाम मीम से मुराद, एक इसका माना बयान किया गया कि ये किसी चीज का नाम है, या तो अल्लाह का नाम है, ये किसी सूरत का नाम है, ये किसी और चीज का नाम है। यानी अलिफ लाम मीम क्या है? ये एक राय है, एक ओपिनियन है। क्या? कि ये किसी चीज का नाम है। यानी अगर ये हरूफ है अलग अलग पढ़े जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जब अलिफ लाम मीम लिखा जाता है तो ये इसका एक माना है। और माना क्या है? या तो अल्लाह का नाम है, या फिर ये किसी सूरत का नाम है। दूसरा ओपिनियन ये है कि इसका कोई माना नहीं है, देयर इज नो मीनिंग, ये बस सिर्फ लेटर्स हैं अलिफ।

साथ साथ दोस्तों की, लोगों की, जो नीडी लोग हैं उनकी भी साथ साथ बनाता चला गया। तो अब दुनिया मेरे बारे में क्या आप कहती है, पहले दुनिया मेरे सामने बैठे, दुनिया तो कभी खुद सामने नहीं आती ना, वो आगे एक बंदा बताती है हमेशा, या सोसाइटी बताती है। तो पहले सोसाइटी को ना अपनी औकात बतानी है कि इसने क्या किया, ये शुरू कहाँ से हुई थी, उसने किया क्या, फिर मैं बताऊँगा मैं कहाँ से शुरू हुआ था। मैं यहाँ से इस वीकनेस से शुरू हुआ था, इन 5 रुपए से मैं शुरू हुआ था जो मेरे पास नहीं थे और मैं यहाँ तक पहुँचा। अब आपकी क्या औकात है, अब आप बताएंगे सोसाइटी वाले जो हैं या सोसाइटी जो है वो मुझे बताएगी कि दुनिया की वैल्यू मैंने सेट करनी है। ये दुनिया का हवा जो है ना, आपको इस बबल को ना फाड़ना पड़ता है कि कौन दुनिया भाई, कोई एक आदमी इस काबिल हो। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 8-10 लोगों को मिला हूँ जिनको मैं, जिन्होंने कोशिश की हैवानी हालत से इंसानी हालत में आने की, जिन्होंने इस काबिल हैं कि उनको रोल मॉडल किसी एक चीज़ के लिए बनाया जाए। ज़िंदगी के एक एस्पेक्ट में उन्होंने एक्सेलेंस अचीव की, उनकी कोई से है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जो इस वक्त दुनिया में लोग हैं, मैं उनकी बात करूँ, जो दुनिया से चले गए उनकी बात नहीं हो रही, वो तमाम लोग जिन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स कुछ बनाया, कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव, किसी इंसान के लिए भलाई की या अपनी कुछ बेहतर चीज़ें की, और कोई ऐसा काम दुनिया में करके गए या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी इज्जत बनती है, कुल 8-10 ऐसे लोग हैं। ये लोग जब मेरे सामने बैठेंगे या मुझे चैलेंज करेंगे तो फिर मैं इनको बताऊं कि जी सर ऐसे हुआ या मैडम ऐसे हुआ और मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं और ये बात। सिर्फ इन 10 लोगों को मैं दुनिया समझता हूं, बाकी लोगों को मैं ज़्यादातर को बेचारे बेचारे समझता हूं, मुझे उन पर तरस आता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुदरत के कानून में किताब के मुताबिक चौपाए से भी बदतर हैं, हैवानी हालत में। तो पहले तो ये दुनिया इस तरह क्वालिफाई करे कि मैं इनको इसको कुछ समझूं, फिर उसके बाद से मेरे से क्वेश्चन आंसर करें। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक आदमी, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, गांधी साहब ने 40 साल फर्ज करो एक काम में, एक चीज़ की खोज में गुजारे, एग्जांपल साथ दे देता हूँ, और उन्होंने वो कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचे और उन्होंने किताबें भी लिखी, उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी आसान की, उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, ऑफकोर्स ही इज़ अ ह्यूमन बींग, लेकिन जिस मकसद से वो निकले उस मकसद के लिए लोग उनको कत्ल भी करना चाहते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं जिनको कंडीशनिंग किया गया है किसी मदरसे से या किसी जगह से, वो उठ के खड़े होते हैं और कहते हैं जी ये जो हैं वो दहरिए हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं और उन्होंने फलां वाली बात ऐसे की। तो आपकी औकात ही नहीं है कि आप गांधी साहब जैसे, पहले तो आप 30-40 साल उस काम में रहें, पहुँचें, समझें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के काबिल हों, इतनी आप औकात बनाएं, फिर उसके बाद किसी एक जगह के ऊपर सामने आए, मुनाजरा करें उनके साथ, बैठ के बात करें कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद भी आप उनको वाजिबुल कत्ल या उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते, उन्होंने अपने कंक्लूजन निकाले हैं। आप बताइए आपने 30-40 साल इस अरक्रेजी जो की है इस रास्ते में, उससे क्या कंक्लूजन निकला। एक स्कॉलर को स्कॉलर चैलेंज करेगा, बच्चा नहीं कर से उठ के चला जाएगा जिसको कख नहीं पता किसी चीज़ का, और ना उसको पता है कि एक बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई और किस वजह से कही गई। ये मैं उनके साइड नहीं ले रहा, मैं दुनिया में कोई भी आदमी जो कुछ भी कर रहा है, आप स्टीवन स्पीलबर्ग को एक आज या बच्चा उसे कहने जी काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, कुछ दिनों के बाद उसको लग पता जाएगा उसके लिए उसने क्या बनाया है, क्या दिखाया है। यू नो, सिर्फ डायरेक्टर का स्टूडेंट होना या डायरेक्शन सीखना क्वालिफिकेशन नहीं है उसके लिए। बहुत जब वो जाएगा, बनाएगा, मामलात आएंगे, चीज़ें बनाएगा, पहला ऑस्कर ले, दूसरा ले, तीसरे ले, चीज़ें दिखे बनाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इस काबिल हो कि स्टीवन स्पीलबर्ग उसको कुछ समझे तो फिर वो आपस में बात करने के काबिल हैं। हमारी दुनिया में और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की दुनिया का मसला ये है कि हर बंदा, वो गांव में ना बड़ी अजीब सी मिसाल थी, घर में दोबारा कोई उसको खाना नहीं देता, सालन मांग ले तो वो नहीं देते, लेकिन ये भी सोशल मीडिया पे बैठ के तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं और कोई क्वालिफिकेशन उनकी ऐसी नहीं होती है। सच पॉइंट देना अगर आपने तो उसका एक तरीका है, डिसएग्री करना है तो आपने एक तरीका है, लेकिन बदतमीजी, बदतहजीबी और इस काबिल होना कि आप की भी कोई वेटेज हो किसी इंसान की ज़िंदगी में, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं चाहे जो भी आदमी हूँ, मैं आज़ाद साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बंदे की ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। मुझे आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट। मुझे कोई नहीं जानता है तो बहुत अच्छी बात। मुझे किसी महफिल में जाता हूँ, आज जैसे अफशन जी ने भी बात की थी, किसी भी महफिल में जहाँ क्वेश्चन आंसर्स हो रहे तो मैंने कभी उठकर कोई सवाल नहीं किया। पिछले 20 साल हो गए मुझको इस काम में भी, लोग मुझे सुनना भी चाहते हैं, मुझे पता है वो कहते भी हैं सर आप अपना भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, कभी कहते हैं जी आप इनका इंटरव्यू कर लीजिए, कभी कहते हैं जी फलां जगह पे आके आप टॉक दे दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बात करना चाहता क्योंकि मेरे पास अपना एक प्लेटफॉर्म है, मुझे जो बात करनी होती है मैं इस पर कर लेता हूँ, जिसको सुनना है इस पर सुन लें, कोई क्वेश्चन है तो आ जाए, कोई मसला है, कोई परेशानी है तो ऑन एयर आएँ और मुझसे बात कर लें।
तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक जगह बनाएं

आला दर्जे की अरबी की हैं और अगर आपका लेवल बस 3 तक ही हो तो वो बातें आपको कंफ्यूज करेंगी, क्योंकि अभी उस मरहले तक आप पहुंचे नहीं हो और 3 के हिसाब से ये गलती लग रही है। 3 के हिसाब से आपको लग रहा है कि इसमें ये तो उसकी तो नहीं बनती, ये तो ऐसे होना चाहिए था, हमने तो क्लास में ये सीखा था, यहाँ पे ये हो रहा है। हाँ, आपने 3री जमात तक क्लास की थी ना, अब जरा कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाए फिर आपको ये बात समझ में आएगी। इसी तरह जैसे को बच्चा जो है वो एक बेसिक मैथमेटिक्स सीख ले और फिर उसको कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन समझ ना आए तो वो कहे कि इसमें गलती है क्योंकि मेरी 3rd ग्रेड मैथमेटिक्स के हिसाब से बात नहीं हो रही। तो इस तरह की बात होती है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक मिसाल रखूंगा कुरान में जो बारीक सा क़िराअत के इख्तिलाफ को साइड पर रखते हुए कुरान में जो ग्रामर के एतबार से बारीक बात बताई जाती है जिसका तर्जुमा करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम, अच्छाई ये नहीं है कि तुम मशरिक़ व मगरिब की तरफ अपना मुंह करो। अच्छाई ये नहीं है कि तुम मशरिक़ व मगरिब की तरफ अपना मुंह करो, ये गलत तर्जुमा है, क्योंकि अब आपको लगेगा कि असल मजमून क्या है, अच्छाई। और अगर अच्छाई वाकई में मजमून होता तो क्या होता, अलबिर्रु, ये नहीं है। असल मजमून है अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिकी वल मगरिब, अन की वजह से पेश की जरूरत नहीं रही, मुकद्दर है, समझा गया है कि अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिकी वल मगरिबी असल में मुब्तदा है और मुब्तदा को बाद में लाया गया है और जो उसकी खबर है जो बाद में बात बतानी थी वो पहले लाई गई है, यानी तरतीब में एक तब्दीली लाई गई है। और तरतीब की तब्दीली जैसे अल्हम्दुलिल्लाह और लिल्लाहिल्हम्द, कुछ बात याद है उसके बारे में, कभी कभी कुछ मायने निकल आते हैं उसकी वजह से, सिर्फ का मायना, सिर्फ अपना मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ करने में ही अच्छाई नहीं है। अब ये सही तरीन तर्जुमा हो गया, सिर्फ मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने ही में अच्छाई नहीं है। अच्छा, इसको जरा फर्क को समझ लें। अगर मैं कहूं ये टेबल नहीं है तो मैं इनकार कर रहा हूं कि ये टेबल नहीं है। अगर मैं कहूं सिर्फ ये ही टेबल नहीं है तो मैं क्या कह रहा हूं, और भी हैं, और भी हैं। अगर मैं कहूं ये अच्छाई नहीं है तो मैं इनकार कर रहा हूं कि ये अच्छाई नहीं है। और अगर मैं कहूं सिर्फ यही अच्छाई नहीं है तो इसका मतलब ये तो अच्छाई है और अच्छाइयां भी हैं। अब मेरा मजमून ये नहीं रहा और अच्छाइयां हो गया, समझ रहे बात। और असल में अब दूसरी इसको समझें, इस आयत से पहले ये आयत नंबर है 177 बकरा की, इसको मशहूरी से मशहूर इसका नाम है आयतुल बिर, अच्छाई वाली आयत, आयतुल बिर। इस आयत से कई आयत पहले बहुत बहुत मकामात पर दूसरे सिपारे के शुरू होने से ही क़िबले की तब्दीली का जिक्र है, तफसीली बहस है क़िबले की तब्दीली का, तहवीलुल क़िबला यानी यरूशलम से की तरफ बैतुल जो अलक्सा है उसकी तरफ नमाज के बजाय अब काबे की तरफ नमाज हो। और बार बार कहा है वहैथुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रहु, वहैथुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रहु سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب। कहां भी हो अब क़िबले की तरफ मुंह करना, जहां भी हो अब क़िबले की तरफ मुंह करना, ये बेवकूफ कहते हैं किस चीज ने इनको मोड़ लिया उस क़िबले से जिसकी तरफ वो पहले मुंह किया करते थे, क़िबले की तरफ मुंह करना, क़िबले की तरफ मुंह करना, क़िबले की बार बार बार बार बार बार। और फिर ये आयत आ गई, उसके सारे के बाद ये आयत आ गई। अगर इस आयत में कहा होता कि मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने में कोई अच्छाई नहीं है, वो पिछली सारी बात का इनकार नहीं है, पीछे क्या सारी बात हो रही है कि उसकी तरफ मुंह करो, उसकी तरफ मुंह करो, उसकी तरफ मुंह करो। अब वो मजमून समझ आ गया कि हमने क़िबले की तरफ रुख करना है, वो बात समझ आ गई। अब बात समझाई जा रही है, अब ये बात याद रखना कि सिर्फ क़िबले की तरफ मुंह करने में अच्छाई नहीं है, सिर्फ ये अच्छाई नहीं है, अच्छाई इससे बहुत बड़ी चीज है। यानी अल्लाह ताला ने उस मजमून को इस्तेमाल करके एक बड़े मजमून की तरफ इल्तिफात किया और उस इल्तिफात का फायदा कहां से निकला, इस जबर से लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिकी वल मग़रिब, इस सिर्फ एक छोटी सी जबर से ही सारी बात सामने आती है। और फिर अब जब ये इंसान सुने

0: सिर्फ यही नहीं है, इस पे इतना एहतमाम किया और फिर ये कह दिया सिर्फ यही नहीं है, तो जहन में फौरन क्या सवाल आता है, फिर और क्या है? यानी अल्लाह आगे बात करने से पहले ही आपके जहन में सवाल डाल चुके कि और क्या है। फिर कहते हैं वलाकिन्नल बिर्रा, मगर बिर ये है, अब बिर मुब्तदा है। अब मुब्तदा आप कहोगे आपने तो कहा था कि जो मुब्तदा होता है उस पर क्या होती है, पेश होती है। हाँ, लेकिन जब इन्ना आ जाए, लाकिन्ना आ जाए, लाअल्ला आ जाए तो मुब्तदा पे भी जबर होती है, इसलिए ग्रामर सीखनी पड़ती है थोड़ी सी। ये मुब्तदा है जबर के साथ अलाउड, एक मुब्तदा होती है उस पर जबर अलाउ नहीं होती, एक मुब्तदा होती है उस पर जबर अलाउ होती है। जैसे मैं कहूँ इन्नल्लाह काना इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह गफूर है, बेशक अल्लाह मुब्तदा है लेकिन जबर के साथ है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, इन्ना, लाकिन्ना, लाकिन्नल्लाह, लाकिन्नल बिर्रा, वो भी मुब्तदा है क्योंकि लाकिन्ना है वहां पर। खैर, मेरी उम्मीद यह है कि आपको कम से कम अरबी ग्रामर में थोड़ी दिलचस्पी करा दूं कि ये जबर जेर का चक्कर है क्या, ये होता क्यों है, इससे फायदा क्या है। आप जब जबरदस्ती आपके पेरेंट्स आपको कारी साहब के पास लेके जाते थे, उन अन इन बुन बन बिन तुन तन दिन जुन जन जिन चढ़ गया फिर बू बाबी तू ताती, उस वक्त क्या क्या फायदा है इसका। लेकिन हर ऊ और हर आ और हर ई और हर उन और हर अन और हर इन का एक मकसद है, और अल्लाह उनमें से हर एक मकसद में से अपने जवाहर, अपनी हिकमत के जवाहर उसमें डालता है। तो अगर ये चीजें थोड़ी सी समझ में आती, ठीक है अरबी सीखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो बाद में बड़ा मजा आता है। उसकी मिसाल देता हूँ अरबी सीखने की, डेंटिस्ट के पास जाना। डेंटिस्ट के पास जाने में किसी को मजा नहीं आता, लेकिन उसके बाद खाने में मजा आता है उससे तो अरबी डेंटिस्ट की तरह है, जाना तो पड़ेगा, एक दफा करा लो काम फिर मजा आएगा खाने का, वरना तुम्हारा फेवरेट खाना भी तकलीफ देगा। तो खैर, ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر, अच्छा अच्छाई क्या है, अच्छाई क्या है? अगर मैं कहूं अच्छाई एक अच्छाई नेकी है, ठीक है, अच्छाई ईमान है, अच्छाई में ईमान है, अच्छाई में नमाज है, अच्छाई में सदका है, तो बात माकूल है, समझ में आती है। अगर मैं कहूं अच्छाई वो इंसान है, अच्छाई वो इंसान है जो नमाज पढ़े, ये बात तो जरा समझ नहीं आती, क्योंकि इंसान अच्छाई थोड़ी होता है। अच्छाई नमाज है लेकिन अच्छाई नमाजी नहीं है, समझ में आ रही है बात? कुरान ने क्या किया, कुरान कहता है अच्छाई वो शख्स है जो अल्लाह पर ईमान लाए। अजीब बात, अच्छाई कैसे शख्स बन गया? ये तो कहा होता ना वलाकिन अल बिर्र अल ईमान बिल्लाह, अच्छाई है अल्लाह पर ईमान लाना, अच्छाई है नमाज पढ़ना, समझ में आ जाती बात। अल्लाह ने अजीब बात कह दी, अच्छाई है वो शख्स जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए, तमाम अंबिया पर ईमान लाए, उसकी किताब पर ईमान लाए और तमाम अंबिया पर ईमान लाए। यहां भी कुतुब का लफ्ज इस्तेमाल, नबीयून का लफ्ज इस्तेमाल किया है, फरिश्तों का सारी जमा में है, किताब कितने में है, वाहिद में। अजीब, वो भी थोड़ा गौर करेंगे, लेकिन पहले पहली बात समझ लें, इसको कहते हैं सीगतुल मुबालगा। अरबी में बड़े फनून है, बड़े आर्ट, बड़ा आर्ट है अरबी के अंदर। उसके आर्ट में से एक चीज ये है कि कोई शख्स इतना दौलतमंद हो तो उसे पता है क्या कहते हैं, ये है दौलत। उसको दौलतमंद नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, दौलत। कोई बहुत ही इल्म वाला हो उसको आलिम नहीं कहेंगे, कहेंगे ये है इल्म, ये है इल्म। कोई बहुत ही सबर वाला हो उसको साबिर नहीं कहेंगे, कहेंगे ये है सबर। ये कहने का मकसद ये होता है कि अगर सबर की कोई मूर्ति होती तो ये होती, अगर इल्म किसी में मुजस्सम होता तो ये होता, अगर जिसी तरह अगर दौलत सारी किसी एक इंसान में समोती गई होती तो वो ये इंसान होता। इसे कहते हैं मुबालगा। मुबालगे में क्या होता है, इंसान बढ़ा चढ़ा के बात करता है, तो मुबालगे में हमेशा आम तौर पर झूठ होता है, मुबालगे में झूठ होता है। जैसे मैं कहूँ ना ये शेर है, शेर, शेर तो नहीं है वो, तो उसमें मुबालगे में जरा बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है, ठीक है। लेकिन कुरान ने जब मुबालगा इस्तेमाल किया तो वो तो अल हक्कुल यकीन, اللہ تعالیٰ نے تو حق نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معیار سے بتایا کہ میرے اپنی طرف سے اپنے نقطۂ نظر سے بتا رہے ہیں کہ میرے نزدیک اچھائی کا مجسمہ وہ انسان ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے, اس کے رسولوں پر ایمان لے, فرشتوں پر ایمان لے آئے اور کتاب پر ایمان لے آئے. کتابوں کا ذکر نہیں کیا, ایک کتاب کا ذکر کیا. کیوں؟ اگر کتابوں کی بات کی ہوتی تو کن کتابوں کی طرف اشارہ ہوتا؟ تورات, انجیل, صحف ابراہیم. اگر کتاب کی بات کی ہے تو کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی طرف اشارہ ہے. پورا جو دوسرا حصہ ہے بقرہ کا, پہلے حصے میں تو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے, اب تورات کی ضد چھوڑ دو, قرآن آ گیا ہے, قرآن آ چکا ہے. آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. اب پچھلی کتابوں کو پکڑ کر اس کتاب کا انکار کرنا اب جائز نہیں رہا, اب اس کتاب پر ایمان لانا پڑے گا اگر اچھا ہونا ہے تو. اب اس کتاب کا حق بنتا ہے, اب آ چکی ہے کتاب. تو یہاں پر ایک کتاب کو مختص کیا گیا ہے, قرآن کو. والکتاب والنبیین. اچھا پھر آگے اور اچھائیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اچھائیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں, وہ اچھائی بن کے وہ گزر رہا ہے, وہ جہاں جا رہا ہے وہ اچھائی گزر رہی ہے. وہ کون سا انسان ہے؟ وآت المال على حبه ذوي القربى. وہ اپنا مال دیتا ہے اپنے مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں آ کر, اس کے کچھ مختلف مفاہیم ہیں. قریب رشتہ داروں کو دیتا ہے. والمساکین وابن السبیل والسائلین, پوچھنے والوں کو. سائل پوچھنے والے کو بھی کہتے ہیں, ضرورت مند کو بھی کہتے ہیں, ضرورت مندوں کو. وفر رقاب, اور جو پھنسے ہوئے ہیں, جو گردن, جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے, یعنی جو زنجیروں میں ہیں, جو غلامی میں ہیں, جو قرضے میں ہیں, جو جیل میں ہیں, وہ فر رقاب ہوئے. وقام الصلاۃ, اور اس نے اس کے بعد نماز قائم کی. وآت الزکاۃ, اور اس نے زکوٰۃ دی. والموفونا والموفونا, اب پچھلی ساری باتیں فیل تھیں. آمنا ایمان لایا, آتا اس نے دیا, اس نے دیا. پھر اقامہ اس نے قائم کی, پھر آت الزکاۃ اس نے زکوٰۃ دی. لیکن یہاں یہ نہیں کہا وہ اوفا, اس نے وفا کی, عہد کے ساتھ وفا کی, اس نے عہد کو پورا کیا. یہاں فعل کا استعمال نہیں ہے, اسم کا استعمال ہے. فعل اور اسم کا فرق یاد ہے؟ اسم میں کیا ہوتا ہے اور فعل اور اسم کے مقابلے میں قوی زیادہ کون سا ہے؟ اسم. یعنی وہ ساری بات تو ہے لیکن اس ساری بات کا خلاصہ پتہ ہے کب پتہ چلے گا کہ کون واقعی اچھا ہے؟ جو وعدے کے معاملے میں بات پوری کرتا ہے ہمیشہ. اصل چیز کی طرف آپ آئے ہیں, افعال سے بلڈ اپ کر کے اصل معاملہ, اصل ایمان کا, اچھائی کا امتحان یہاں ہے. اس کا یعنی نمازوں کا, دینے کا, اس سب کا خلاصہ کیا نکلا؟ وعدہ پورا کرتا ہے پکا, ہمیشہ ہمیشہ. والموفون بعہدہم. اب موفون میں یہ اونا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, اونا. آپ نے کبھی سنا ہوگا, کبھی اونا ہوتا ہے کبھی اینا ہوتا ہے. ہدل للمتقین قل یا ایھا الکافرون, کبھی اونا ہوتا ہے کبھی اینا ہوتا ہے, اس کا گرامر سے تعلق ہوتا ہے. لیکن ایک بات ضروری یاد رکھنا, اگر اونا ہے اور پھر وا اور, تو باقی بھی اونا ہی ہوں گے. الکافرون والمنافقون والمسلمون والعابد, اونا اونا اونا. اگر اینا ہے تو سارے اینا ہی چلتے آئیں گے. المعطوف عن المرفوع مرفوع, المعطوف عن المنصوب منصوب, المعطوف عن المجرور مجرور. اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا, بس آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے میں نے عربی کا حوالہ دیا تھا تاکہ آپ عربی سیکھیں تھوڑی سی. یہاں پر ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, یعنی اونا سنائی دیا نا, اس کا مطلب ہے آگے کیا ہونا چاہیے, ایک اور اونا. والصابرون فی البأساء والضراء وحین الب, یہاں کیا ہوا؟ والصابرین. اورینٹلسٹ کہتا ہے آہ گرامر مسٹیک, اونا ہونا چاہیے تھا, دیکھا اینا ہے قرآن میں, غلطی. کیونکہ اس نے تیسری جماعت تک پڑھا ہوا ہے مسکین نے, تو اس کو غلطی نظر آ گئی. وہ تھوڑی سی اور تعلیم حاصل کر لیتا تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا دروازہ نہیں کھولا, کیا کر سکتے ہیں بیچارے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ اگر آپ اپنے شوہر کو بھیجتی ہیں گروسریز کرانے کے لیے, بیبی گھر پہ ہے, انڈے لانے ہیں, دودھ لانا ہے, بریڈ لانا ہے, ٹماٹر لانے ہیں, پیاز لانے ہیں اور ڈائپر لانے ہیں, बहुत सारी चीजें जानी है, लेकिन एक है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, पैंपर नहीं भूलने। तो होगा दूध होना, ब्रेड होना, अंडे होना, प्याज होना, टमाटर होना, डायपर होना। बात समझ में आ रही है? जब एक लिस्ट होती है उसमें सारे ऊना होते हैं, और फिर एक आइटम लिस्ट में आती है जो बाकी सारी आइटम्स पर भारी है, तो उसको गैर मामूली तौर पर ऊना से कहा ले आते हैं ईना। तो वह साबिरीना में अब कहा इन सब से ऊपर और आला मकाम, इन सब का क्लाइमैक्स ये मत भूलना, वह साबिरीना
1: البأس.
0: अगर इसका तर्जुमा करना होता प्रिंटेड किताब में तो मैं साबिरीना को उर्दू तर्जुमे में उसको बड़ा लिख देता मैं, सबर करने वाले। क्यों इतना एहतमाम सबर के ऊपर? क्यों इस उसलूब की और الراسخون في العلم والمقيمين الصلاة हैं मसालीम। इसी तरह है वम्रअतुह हम्मालतल हतब, अजीब नसब जबर। तो इसके कुछ 16 मुख्तलिफ फवायद होते हैं, उसमें से एक जहां यहां पर जो कहा जा रहा है ना, अन नसबु अलल एहतिमाम, नसब किया जाए एहतिमाम के लिए या खास तफखीम के लिए, यानी उसको भारी करने के लिए। तो ये लिस्ट में होता है और उस पर फिर एकदम से नसब आ जाता है। तो यहां पर कहा वसाबिरीन। अब सब्र की इतनी अहमियत क्यों है? सब्र कहते हैं किस चीज को है? हमारे यहां कहते हैं सब्र बर्दाश्त करने को, हमारे यहां कहते हैं सब्र बर्दाश्त करने को, जो मैं बार बार कहता हूं ये पाकिस्तानी सब्र है, कुरानी सब्र और चीज है, पाकिस्तानी सब्र और चीज है। कुरान वाला सब्र क्या है कि जो आप सही काम कर रहे हो वो आसान हो, मुश्किल हो, कोई कोई सपोर्ट करे, कोई ना करे, कोई अकेला हो, कोई सबके साथ हो, कोई कमज़ोर अपने आप को महसूस करे, कोई ताकतवर महसूस करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने करना है वो मैंने करना है, मैंने हटना नहीं है, मैंने पीछे नहीं हटना, मैंने पीछे कदम, मैंने आहिस्ता कदम लेना है लेकिन कदम मैंने ज़रूर लेना है, मैंने बढ़ते चले जाना है। इसे कहते हैं सब्र। सब्र की अगर तस्वीर अपने जहन में खींचनी है ना कि आंधी चल रही है, रेत आपकी तरफ मुंह में आ रही है और आप कदम चलते चले जा रहे हो, चलते, ये साबिर है। साबिर है जो बढ़ता चला जाए, पीछे नहीं हट रहा, वो चलता चला जा रहा है, यह है सब्र करने वाला। उसके अंदर एक टफनेस है, उसके अंदर एक उसके अंदर कुव्वत इरादा है और उसकी वजह से वो बढ़ता चला जाता है। इसे कहते हैं सब्र। इसलिए सब्र और इस्तेकामत के लफ्ज दोनों हम इकट्ठे इस्तेमाल करें, सब्र और इस्तेकामत। क्यों? क्योंकि उसमें उर्दू के एतबार से असल में उसमें इस्तेकामत है, असल में इस्तेकामत है। इसकी अहमियत क्या है? फर्ज करें कोई अच्छा था, अल्लाह पर ईमान लाया, उसकी किताबों पर, रसूलों पर, फरिश्तों पर, नमाज पढ़ी, ज़कात दी, खैरात की, लोगों का ख्याल किया, वादे पूरे किए, लेकिन फिर ढीला पड़ गया। किस चीज़ की कमी थी? सब्र की कमी थी। सब्र की कमी हुई तो वो सारे जो अच्छे काम किए थे, पॉजिटिव में जा रहे थे, वो फिर बेकार होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि बाद में जाके मैंने बहुत अच्छे काम किए थे लेकिन अब मुझ में इतना सब्र नहीं है, मुझसे नहीं होता, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये क्या है? सब्र की कमी। मैं मर्दों और औरतों में सब्र की कमी मुख्तलिफ तरीकों से आती है। मैं आपके बारे में एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत दफ़ा सुनी है। मुझे कहता है मैं बहुत नमाज वगैरह, मैंने सोचा मैं नमाज पढ़ना शुरू करूँ, मुझे ख्याल हुआ कि मैं जाऊँ और मैं अटेंड करूँ और मैं कुछ सीखूँ, तो मैं वहाँ पर गई, पहली दफ़ा मैंने पर्दा किया और मैंने नमाज पढ़ी और पीछे से किसी ने मुझे कहा आपने नमाज गलत तरीके से पढ़ी है। फिर मैंने कहा बस मैं यहां वापस नहीं आ सकती। इतने जजमेंटल लोग होते हैं ये, इतना मुझे जज किया है इन लोगों ने, मैं अब नहीं आ सकती यहां पे, क्योंकि इस इतना बड़ा फित मुझे कैसे कह दिया इन्होंने, ये कितने कितनी बेदर्दी से उसने मुझे कमेंट मारा। अब कंपेयर करते हैं, ये बंदा नमाज पढ़ने गया मस्जिद में, किसी ने कहा तेरे पांचे उससे नीचे, टहने से नीचे, तेरी नमाज नहीं होगी, वो ऐसे तेरी नमाज कबूल नहीं हुई। कहते हैं ठीक है उसको टू डिफरेंट रिएक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? बिकॉज صبر, ان کا صبر کا امتحان اور طرح سے ہوتا ہے, آپ کے صبر کا امتحان اور طرح سے ہوتا ہے. آپ کو کوئی کوئی بات کہتے تو وہ بات خنجر کی طرح ایک دفعہ نہیں لگتی, وہ نکال کے آپ پھر دوبارہ لگاتے ہو, پھر نکال کے پھر دوبارہ لگاتے ہو, پھر نکال کے پھر دوبارہ لگاتے ہو. او مائی گاڈ, کتنی دفعہ کہا تھا, ایک دفعہ ریپیٹ پہ لگائی. اس کو ہزار دفعہ کہہ دو, اس کو ایک دفعہ کا یاد نہیں رہتا. یہ بھی کہا تھا تم نے. ہاں, ہمارے صبر کا امتحان اور ان کے صبر کا امتحان, اور اللہ کی مخلوق ہے. ان سعیکم لشتا, تمہاری کوششیں مختلف ہیں. غلط جی جی, حکم تو ایک ہی ہے لیکن اس کا امتحان مختلف ہے نا. حکم تو ایک ہی ہے, نماز کا بھی حکم ایک ہی ہے, زکوٰۃ کا بھی حکم ہے, سفر کا بھی حکم ہے, احکام تو ایک ہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا نا رات دن مختلف بنائے, اسی کے ساتھ کہہ دیا کہ مرد اور عورت کو مختلف بنایا. وما خلق الذکر والانثى, جہاں رات اور دن کے اختلاف کی بات کی وہاں مرد اور عورت کے اختلاف کی بات کی. ہماری سائیکالوجی الگ ہے, ہماری تھاٹ پروسیس الگ ہیں, ہماری ویکنیسز الگ ہیں,

0: तो पर यहाँ पर ना वलाइका हुम मुत्तकून, उन्होंने वाकई सच का हक अदा किया है और वो ही है तकवे वाले। अल्लाह ताला हमें उनमें से बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बगीना YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजा।
0: हम जो है ना, हम उम्मत, हम एक जिस्म की तरह है। इसकी एक हिस्से को तकलीफ हो तो सारे हिस्से को तकलीफ होती है। तो जब मुसलमान मुसलमान को मार रहा है तो कुरान ने क्या ताबीर इस्तेमाल की है? हम अपने आप को मार रहे हैं, हम अपने आप को मार रहे हैं। आप किसी मुसलमान की बेइज्जती करते हैं, आप किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपनी बेइज्जती कर रहे हो। आप किसी को शर्मिंदा कर रहे हो, किसी मुसलमान को? आप किसे शर्मिंदा कर रहे हो? आप खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। आप किसी के नाम की धज्जियां उड़ा रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी से लड़ रहे हो, किसी से मुसलमान से ज्यादती कर रहे हो, आप अपने आप से कर रहे हो। बड़ी हिकमत है कुरान की। कुरान ने बार बार ये बात समझाई है।
2: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर FM. इंस्पायर FM. इंस्पायर 105.1 FM.
3: रिश्ता नेटवर्किंग। आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर FM रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन्स मार्की, गोर्स फार्म, हाई रोड, बेडफोर्ड, MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
4: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
8: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Miss the show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.